0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी।

0: समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास

0: ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के

तारीफ है। इतनी प्यारी प्यारी सॉन्ग सुन के काम करने में मजा आ रहा है। ऑसम प्लेलिस्ट ऐसे ही प्ले करते रहिए। इटो कारण अपना खान सब के हदय दिन प्रोग्राम दिया है ना शामिल हो भी कोई ना जनाई दिया से कि मने जीती अपना खान प्रोग्राम दिया है ना शामिल हो प्रोग्राम तो एकदम शानदार हो ना सुंदर हो ना पूरा पूरी हो जाए कोई ना आजी भी आको जनाई दिया से ऐसे ही आपका जोड़ी बनाई रखिए और रोज हर रोज आके प्रोग्राम में शामिल हो कि रहिए। तो हुनी रखा सब लागे तो मैसेजेस खान लौटे लास्ट गीत बजाई दिया से हुनी बो तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म की गीत गाए से अलका याग्निक और सोनू निगम और इतना प्रलोक पसते अपना लोके हुनी बो वर्ल्ड न्यूज और रामी खान अकोलो कुरिया बो 11:30 मिनटे मुई लोई के ना ही बो लाइव फोन इन प्रोग्राम।

0: for upcoming Women's T20 World Cup in England and Wales. And in weather, India Meteorological Department forecasts thunderstorm and lightning with heavy rain and 30 to 40 km per hour gusty wind likely to occur at few places over Nagaland. That is all we have in this news headlines.
1: FM Travel Ban
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment.
2: FM Travel
1: Ban 103 MHz.
0: हाँ जी भैया लिसनर्स जैसे सो मैंने जैसे ये रियल टाइम टी कोई मैं ट्रैफिक लगा जानकारी और को जैसे नॉर्थ बाउंड को ले तो ये तो नॉर्थ फिनी जा लगा ट्रैफिक डायरेक्शन ऐसे और साउथ बाउंड ले तो साउथ ऑफ कोहिमा फिनी आया लगा ट्रैफिक डायरेक्शन कोई जैसे तो ये मोंकला जंक्शन मोंकला टू पीएचक्यू जंक्शन में जो जैसे को ले नॉर्थ बाउंड लाइट डायरेक्शन दी ट्रैफिक तो हैवी दिखाया से और साउथ बाउंड लाइट डायरेक्शन दी ट्रैफिक तो लाइट ऐसे अलग रास्ता लो पारे वो ओल्ड मिनिस्टर्स हिल टू जेल कॉलोनी PHQ junction or major junction majodia sikole northbound light direction dido traffic to moderate ase aro southbound light direction dido traffic to light dekha ase alag rasta logo ko lito bara medical to timotu to ig noliba ladies mile road ido rasta kan lobo paribo TCBR as a point majodia sikole northbound light direction dido traffic to moderate ase aro southbound light direction dido traffic to light dekha ase अलग रास्ता का लोग पारे वो टीसीपी टू राजू पॉइंट नोलेबा बॉक्स कटिंग टू एनएचए के टू सेंसस पॉइंट नोलेबा फुलबारी टू कोचोजी ग्राउंड टू राजू पॉइंट और सेंसस पॉइंट मजुदिया से कोले नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड टू भी ट्रैफिक टू लाइट ही असे हाई स्कूल जंक्शन और सेंसस पॉइंट मजुदियोले नॉर्थ बाउंड लाइट डायरेक्शन टू ट्रैफिक टू हेवी दिखाई असे और साउथ बाउंड लाइट डायरेक्शन टू ट्रैफिक टू लाइट असे अलग रास्ता लो पारो बिलिग्राम रोड टू डीपीएस नोलिबा हाई स्कूल जंक्शन टू टी मॉडल रोड एनएचए के जंक्शन और सेंसस पॉइंट मजुदी कले नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन दी ट्रैफिक टू मॉडरेट आसे और साउथ बाउंड डायरेक्शन दी ट्रैफिक टू लाइट दिखाई आसे अलग रास्ता लो पारो टीसीपी टू राजू पॉइंट इट वाज एम निकन रियल टाइम टी कोइमा ट्रैफिक लगा जानकारी होनीसी अनि दिसे दु जानकारी तो आकाशवाणी कोहिमा इन कोलैबोरेशन विद कोहिमा ट्रैफिक पुलिस इधर आगे बढ़ाई ना प्रोग्राम आने टी बोले ऐसे वीमेंस टाइम
1: एफएम ट्रैकर बैन
2: 103 MHz
1: न्यूज़ म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट
2: एफएम
1: 103 MHz
3: Hello listeners, it's your Akashvani Kohima, FM Trakoban 103 MHz. Maiki Manulaga Awards Program Day listeners, sobke welcome kuriyase. Apnihan itya honibo folk tunes with women, aro itya apnihan karne play kuriyase. Keshali and friends Ganka. So stay tuned.

0: आप कॉल किया और आपने जो मांग किया है आप सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया.
1: धन्यवाद मैम.
0: वेलकम. होने ठगा सब बिल्ला प्रोग्राम सबसे पहला टेनी दिया से दूध का कर्ज फिल्म की गीत गाये से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोचवाल लगा वास्ते और यू गीत शुनि बोले मन हो गा पसंद कर रमेश प्रजावती और तार एफ एम ट्रैगोपन लगा तार लगा किसुमान साथी बिल्ला खान के डेडिकेट कर तो शुनिया शुरू हम मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोचवाल लगा वास्ते.

0: जी, आपका शुभ नाम?
1: मैम, मैं शिवा लोहा टेम्पी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: शिवा लोहा
1: जी मैम,
0: कहाँ से?
1: एमपी विदिशा से।
0: ओके, एमपी से।
1: जी
0: बोले,
1: मैम,
0: हालचाल कैसे हैं?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, और आप लोगों के कार्यक्रम सुन के बहुत लाजवाब लगते हैं, और
0: ओके,
1: जिस तरह से
0: शुक्रिया।
1: आप हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं मैम, वो खूबसूरत लगता है आप लोगों का अंदाज।
0: जी शिवा जी, मैं भी सीख रहा हूँ अभी।
1: जी मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से जब आप बोलते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है।
0: जी शुक्रिया।
1: जी बहुत।
0: और बोलिए, आप आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मैम, मूवी का नाम रहेगा बलमा।
0: बलमा।
1: जी मैम,
0: बलमा, देखता हूँ। ओके, बलमा। अगर मेरे पास नहीं है तो और कुछ आपका मन में है?
1: मैम मूवी कच्चे धागे मिल जाए तो,
0: हाँ,
1: कच्चे धागे मूवी।
0: कच्चे धागे।
1: जी
0: बहुत बहुत खेद है कि ये भी नहीं है निकिया शायद।
1: तो मैम, आज की बन मिल जाए, राहुल राय वाले आज की बन।
0: वो कभी भी नहीं बजाया है आज तक। अगर हम लोग यहाँ से नहीं बजाया है तो शायद हम लोग के पास नहीं है, इसलिए नहीं बजा रहा है। तो
1: जी, तो मैम एक मूवी रहेगी खिलाफ, अगर वो मिल जाए 90s
0: खिलाफ।
1: की।
0: ओके, खिलाफ देखता हूँ। खिलाफ नहीं है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी 786 है और खिलाड़ियों का खिलाड़ी सिर्फ ये है।
1: तो मैम एक काम कीजिए, आप आपकी पसंद का गाना चला दीजिए।
0: आपका पसंदीदा गीत होना चाहिए, तो मेरा पसंद का कैसे बजा सकता है मैं? आप एक एक फिल्म का नाम दे दीजिए, देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं।
1: मैम एक मूवी रहेगी कयामत, ये मिल जाए तो।
0: कयामत।
1: जी
0: कयामत में कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: मैम, आज से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में है।
0: अभिजीत भट्टाचार्य का आवाज में मैं बोल देते हैं, एक बार नहीं करना और दिल
1: जी,
0: चु यही है
1: यही
0: ना।
1: मैम,
0: अगर
1: यही
0: आप लोग ने सही गाना का बोल नहीं बोला तो यहाँ में खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: जी
0: फिर भी
1: बिल्कुल। या तो फिर स्पेलिंग आए मैम मूवी की, या फिर गाने की स्पेलिंग आए, तो आपको थोड़ी सहायता मिल पाए।
0: ठीक है। अभी जी शिवा जी, आपने आप किसी का नाम लेना है डेडिकेट करने के लिए?
1: जी मैम, हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी भदरुआ से, राकेश जी, भगवान सिंह परमार जी, हमारे मित्र रहेंगे रमेश प्रजापति जी, अविनाश जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आप।
0: ओके, ठीक है शिवा जी, आपने जितना भी मांग किया है मेरे पास नहीं था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। फिर
1: नहीं नहीं
0: भी
1: नहीं मैम, देखिए हम एक परिवार हैं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज घर में नहीं है तो अपन बिगड़ के भी रह सकते हैं मैम, ऐसी कोई
0: ठीक
1: बात
0: है,
1: नहीं
0: फिर
1: है।
0: भी आपने कयामत का मांग किया है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू मैम।
0: यू आर वेलकम। होनी रहेगा सब बिलक प्रोग्राम होते ही बार दूसरा गीत दिया सा अभिजीत लगा वास्तव फिल्म कयामत और ओई टू गेट टू पसंद कुरी के नाम इखल नोट कॉल कुरी से मध्य प्रदेश प्र शिवा लोहा आरो तार प्र तार लगा FM लगा कि सुमन साथी बिलक आरो होनी रहेगा सब बिलक के डेडिकेट कुरी दी के ना से तो एक साथ मिली के ना हुनी पर और एंजॉय कुरा होबो कयामत फिल्म की गीत।
2: मैं फिर से जीना चाहती हूँ रजत, तुम्हारी आंखों में, बाहों में, तुम्हारे साथ। मैं इंतजार करूंगी रचित, एतबार करूंगी, हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करूंगी, बस पार।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: मध्य प्रदेश से?
1: हाँ, मध्य प्रदेश से सिंह परमार।
0: ओके, बोले कौन सा गीत सुनना है
1: दीदी? आपका आपके पास मिल जाएगा? एक ही फिल्म का नाम बताऊंगा मैं, ये है रात फिर ना आएगी, और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।
0: ओके, ये रात फिर ना आएंगी।
1: और गाने के बोले, हजूरे वाला जो हो इजाजत, हम ये सारे जहां से कह दे।
0: हजूरे वाला
1: जी,
0: मीनू और आशा भोसले का आवाज में है।
1: हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: ओके ओके, और किसी को डेडिकेट करना है?
1: यहाँ दीदी मेरे बहुत सारे मित्र हैं आपके यहाँ से, तो मैं करूँगा।
0: ओके,
1: शिवा लोहट जी है, अंजलि भस्मचारी है, रमेश पात्र है, और अमल भस्मचारी है, विमल भस्मचारी, रमेश प्रजापति, पूरन वर्मा जी, राकेश जी शिमला से, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, भाईकोन मुंडा जी हैं, और गंगाधर सावनकर जी हैं। और सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा दीदी, आपको भी रहेगा।
0: ओके, थैंक यू भगवान जी, आपने कॉल किया, आपने जो मांग किया है मैंने बजाने के लिए रेडी करके रखा हुआ है।
1: दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा गीत मिल गया आज।
0: तो

0: सब्सिडी मिलता नहीं
1: जी, बहुत लोग वो बोल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत खेत है। फिर भी
0: जी।
1: आज तो आपका कॉल लग गया है, आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने
0: धन्यवाद
1: के लिए शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: वेलकम। होनी थका सब बिलाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिया से ये रात फिर ना आएगी फिल्म की गीत गाय से मीनू और आशा भोसले लगा वास्ते और यू गीत टू শুনিবলৈ মন হৈ কিনে আমি কালতে কল কৰি কিনে অনুৰোধ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশ পৰা ভগৱান সিং বৰ্মা। তো তাৰ পৰা তাৰ লগা কিছুমান সাথীবিলাক তাৰ খানকে ডেডিকেট কৰি দি কিনে আছে। তো শুনিয়া শুৰু হ'ব ইয়ে ৰাত ফিৰ না আয়েগি ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन कोई सी?
1: जी, मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ। तनुश्री
0: आपका शुभ नाम?
1: जी,
0: तनुश्री।
1: नहीं
0: आज पहली बार कॉल किया है आपने?
1: मैम, मेरा आपसे पहली बार बात हुई थी ना मेरी।
0: ओके, भूल जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कॉल करता है। माफी चाहती हूँ उसके लिए।
1: नहीं, ये तो कोई बात
0: ओके
1: नहीं।
0: ओके, बोलिए कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: फिल्म है रॉय रॉय
0: हीरोइन
1: रॉय,
0: रॉय। रॉय में कौन सा गीत?
1: चिटिया का लैया ऐसा करके
0: ओके, किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी। मेरी बेस्ट फ्रेंड और सिस्टर है अंजलि भट्टाचार्य, उसको डेडिकेट रहेगा
0: सिर्फ एक ही है, नाम लेगा?
1: जी, और मेरे पापा को और आपको।
0: ओके, थैंक यू। तनुश्री, आपका गीत सुनिए और एन्जॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: ओके, बाय बाय।
0: बाय बाय। होने रहेगा सब बिलाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिया से रॉय फिल्म के गीत गाए से मीट्स ब्रदर्स अंजान और कनिका कपूर लगा वास्ते আর এইটি গীতটি শুনি বলে মন হয়ে না আমি খালতে কল করে কিনা অনুরোধ করেছে তনুশ্রী আর তার পর তার লাগা ফ্রেন্ডকে ডেডিকেট করে কিনা আছে আর শুনি থাকা সববিলাক এন্ড ইনক্লুডিং মি তো একসাথ শুনব আর এনজয় করা হব রয় ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: जी नमस्ते,
0: नमस्ते। हाँ
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: उज्जैन से
1: जी
0: प्रेम सिंह
1: आपने
0: सिसोदिया।
1: आपने जी बिल्कुल
0: बोले कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: जी, फिल्म का नाम है किस्मत।
0: किस्मत
1: हाँ, पुरानी
0: किस्मत।
1: वाली है,
0: हाँ, कौन सा वाला गीत है?
1: कजरा मोहब्बत वाला, आंखियों में ऐसा डाला।
0: ओके, आशा भोसले का आवाज।
1: नहीं, आशा भोसले नहीं, शमशाद बेगम की आवाज में।
0: आशा भोसले और शमशाद का आवाज में है।
1: हाँ, जी,
0: हाँ,
1: सॉरी सॉरी।
0: ओके। किसी को नाम लेना है किसी का?
1: जी बिल्कुल, हमारे दोस्त बहुत सारे हैं आकाशवाणी के, भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, केसरी सिंह राजपूत, रमेश टेलर भोपाल से हैं, सुनील झा है भोपाल से, और आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा गाना ये।
0: ओके, थैंक यू।
1: जी, और आपको बताओ मौसम कैसा है वहाँ पे?
0: यहाँ पे मौसम तो बहुत अच्छी है। कभी कभार बारिश होता है और कभी कभार तो धूप भी नहीं होता है। ठंडी ठंडी हवा भी होता है। कभी कभार तो थोड़ा सा बहुत गर्मी भी होता है।
1: जी, आपके यहाँ पे पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी
0: हाँ
1: इलाका है, मैदानी है वहाँ पे?
0: हाँ पहाड़ी का इलाका है हम लोग।
1: अच्छा, पहाड़ी, और फसल के
0: हाँ,
1: रूप में वहाँ पे शायद।
0: इसीलिए तो बहुत अच्छी है रहने के लिए।
1: हाँ अच्छा जी, हमारे यहाँ पे
0: ओके,
1: तो जी
0: बोले
1: आपको बताओ,
0: बोले।
1: मैदानी इलाका है हमारे यहाँ पे।
0: बहुत गर्मी है ना?
1: हाँ, गर्मी होती है और मैदानी इलाका है, यहाँ पे फसल लगाई जाती है सोयाबीन की और गेहूँ की।
0: ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, प्रेम
1: जी
0: सिंह सिसोदिया, आपका गीत मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप सुनिए और एन्जॉय कीजिए।
1: जी
0: और
1: थैंक यू सो
0: कॉल
1: मच।
0: लगाने के लिए दिल से शुक्रिया।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। होने रहेगा सब बिलक प्रोग्राम जे। बार दूसरा गीत होने वो किस्मत। फिल्म के गीत गाए सा आशा भोसले और शमशाद बेगम लगा वास्ते। और यू गीत तो होने बोले मन हो गा পসন্দ করেছে। আমি খান লোতে কল করি কিনা উজ্জয়ন ব্রা প্রেম সিং সিসোদিয়া। আর তারপর এফ এম ট্রাগপেনলা কিছু সাথী বিলাক আর শুনি থাকা বিলাক কারণে ডেডিকেট করি কিনা আছে। তো শুনব কিসমত ফিল্ম কি গীত।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर

0: सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोतो, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: यस, ये है आकाशवाणी रेनबो और ये समय है रेनबो हेल्पलाइन का। एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं, बबिता त्रिपाठी, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ होंगे एक एक्सपर्ट भी, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जुड़ेंगे हम आपसे आज, और आप सबके सवाल भी मोस्ट वेलकम है जी। तो सबसे पहले तो टॉपिक बता देते हैं, आज का टॉपिक क्या है, किस पर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि जीवन में सकारात्मकता कैसे अपनाएं। बहुत बढ़िया लगता है सुनना कि भाई पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। कोई भी बोल देगा आपको पॉजिटिव रहो, अरे भाई कैसे रहें पॉजिटिव, करियर में इतनी प्रॉब्लम, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम, और इतनी सारी हम डेली प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं कर लेते हैं, और सोच के कुछ और चलते हैं घर से और होता कुछ और है बाहर। ऐसे में हम सकारात्मक कैसे रहे और किस तरह से अपने मूड को एकदम बढ़िया सा रखें और एनर्जी के साथ, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बात करें कि हम बहुत खुश हैं, क्या हम दिखावा करें। ऐसे तमाम सवाल अगर आपके दिमाग में भी है तो आप हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर करिए और उनसे ही पूछ डालिए, मैं भी पूछूंगी एकदम। बहुत सारे सवाल लेकर मैं तैयार हूँ और हमारे एक्सपर्ट जवाब देने के लिए तैयार हैं। और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बलराज सैनी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इनका भी स्वागत कर लेते हैं। स्पीकर मेन वो है, मैं नहीं हूँ, तो मैं काफी बोल चुकी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू बबीता जी, और सब श्रोताओं को मेरा प्यार भरा मुस्कुराता हुआ नमस्कार।
2: और ऐसा लग रहा है ना आवाज से भी कि सकारात्मक होना चाहिए, मतलब कुछ लोगों की आवाज भी सुन के हमें समझ में आ जाता है कि सकारात्मकता अपनानी जरूरी है। और अब बातें सुनेंगे तो देखिए क्या पता हम भी पॉजिटिव हो जाएं और कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए सकारात्मकता में। वैसे बात इतनी लंबी चौड़ी होने वाली है कि मैं सोच रही हूँ पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं और देखते हैं सकारात्मक कैसे।

0: मूव ऑन कर जाएं तो बात ही क्या है। कई बार होता है हम होल्ड करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं और कॉन्शियसली होल्ड करके रखते हैं कि भाई होल्ड करके रखेंगे और इनको जवाब जरूर देना है लाइफ में, ये सबसे बड़ा टारगेट बना के रखते हैं। तो क्या ये सही है? और कई बार मुझे लगता है कि ये सही भी होता है, क्योंकि अगर हम होल्ड नहीं करेंगे किसी चीज को, अगर दिल से नहीं लगाएंगे, तो फिर वो जुनून कहां से आएगा जिसकी वजह से हम वो कुछ बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको बैलेंस करना हमारे कई बार बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे एक्सपर्ट किस काम आएंगे, डॉक्टर बलराज सैनी, जो कि आज मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ हैं, उनका हम पूरा लाभ उठाते हैं और जानते हैं कि सकारात्मक किस तरह से रहें लाइफ में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आखिर मतलब क्या है पॉजिटिव रहने का जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं? तो ऐसे में क्या उन प्रॉब्लम से आंखें मूंद लें, या फिर सोचें कि हम टेंशन नहीं लेंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव रहना है। तो सर किस तरह से हैंडल करें, आप समझाइए।
1: मैम देखिए, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, नॉर्मली मैं नेगेटिव से स्टार्ट नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा कि जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है तो जिंदगी है। अगर हम ECG ग्राफ को भी देखें तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर ग्राफ फ्लैट है दैट मींस यू आर डेड, सो इट ऑलवेज गोज अप एंड डाउन। यानी जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं, एंड द प्रॉब्लम्स चैलेंजेस ऑलवेज हेल्प अस ग्रो। तो उससे घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम सकारात्मक कैसे रहे, पॉजिटिव कैसे रहे। तो ये बहुत सिंपल चीज है, आई नो जितना सिंपल मैं कह रहा हूं उतना है नहीं।

0: नहीं बट फिर भी है कि हमको जो भी सिचुएशन हो उसमें अच्छा क्या है उस चीज पे फोकस करना है। हर चीज में, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो हमको उस पे फोकस करना है। अब जब मैं ये कहता हूं कि हमें हर सिचुएशन पे उसकी अच्छाई पे फोकस करना है, ध्यान रखना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉब्लम्स को हटा दूं, जो मेरी फीलिंग्स है उनके बारे में नहीं सोचूं। बिल्कुल मुझे उसका ध्यान रखना है और चैलेंजेस पे भी ध्यान रखना है कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करूंगा। तो इसका फिर कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी बात करता हूं, अक्सर बात करता हूं, कैन आई डू इट और हाउ कैन आई डू इट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है? कैन आई डू इट और हाउ कैन आई डू इट, दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर है?
1: हाउ कैन आई डू इट,
0: एग्जैक्टली। तो यही एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम मेरे सामने कोई आई तो अगर मैं ये फोकस करता हूं कि क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं 50% पॉजिटिव टू 50% नेगेटिव हूं, राइट? यानी कि आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन जैसे मैं कहता हूं हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैंने अज्यूम कर लिया है और यही मेरा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है कि मैं इसको कर सकता हूं। अब मुझे सिर्फ वो जरिया ढूंढना है जैसे मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी।
1: पॉजिटिव रहने के लिए आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि हाउ कैन आई डू इट,
0: यस, मैं उसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं, कर सकती हूं।
1: हाँ, और ऐसे सवाल बहुत सारे सबके मन में होंगे कि आप पर्सनली क्या फील कर रहे होंगे, जैसे आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है और आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जरूरत होती है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलें, कौन गाइड करे, और उसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर से बढ़िया क्या हो सकता है रास्ता, जब वो आपको बताए कि आप पॉजिटिव रहते हुए अगर सोचेंगे तो रास्ता भी अपने आप निकल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ कौन है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: एंकर मैम को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार सर, आपका नाम बताएं सर पहले।
2: और टॉपिक रिलेटेड सर को भी नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: सर इसको राजेंद्र कहते हैं और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए प्लीज।
2: मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि जैसा आप खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन मन।
0: बिल्कुल सर।
2: तो घरेलू स्तर पर ही पहला इसका उपाय बताएं कि हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, घर में हमें एटमोस्फेयर क्लाइमेट या सरकमस्टांस तैयार करनी चाहिए कि अगर पेड़ की जड़ ही मजबूत होगी तना ही वो पेड़ जो है आगे चल के फलेगा फूलेगा।
0: हाँ जी।
2: तो फिर हम स्कूल दफ्तर में जाते हैं, रस्ते मार सड़कों पर जाते हैं, उसके पैसे को मतलब बिल्ड किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इस बारे में प्रकाश डाले। इन दोनों में बहुत ज्यादा मानसिक डिजीज से परेशान हूँ, कुछ शारीरिक डिजीज से भी हूँ सर।
0: हाँ जी सर। सर आपके सवाल के दो हिस्से हैं तो मैं दोनों को ब्रीफली डिस्कस करना चाहूंगा। पहला आपने बोला खाने के ऊपर, तो मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूं कि हमारा रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए। ओके, यानी कि सबसे पहले देखिए मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम वेजिटेरियन रहें तो अच्छा है। मैं कुछ नॉन वेज के अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन ये मेरी सोच है, मेरा मानना है। तो सबसे पहले हम अगर वेजिटेरियन रहें, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स सब्जियां खाएं, जितना घर का खाना खाएं, हम फास्ट फूड कम खाएं, अगर खाना ही है तो हफ्ते 10 दिन में एक बार। तो ये खाने की जो बात है उससे हमें बिल्कुल हेल्प मिलती है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो वेजिटेरियन खाना खाने के लिए ही बना है, हमारे दांत वैसे नहीं है जैसे बाकी जानवरों के होते हैं। ये खाने की बात हो। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह थोड़ा जल्दी उठे, मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 बजे उठे, उठ सके तो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे 6 बजे उठे, सुबह उठे, पार्क में जाएं, पार्क में थोड़ा समय लगाएं, मेडिटेशन करें जो हम आगे भी बात करेंगे जरूर इसके ऊपर, पार्क में नंगे पैर चले और घास को मिट्टी को अपने पैरों पे लगने दें, और जितनी देर के लिए भी जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा, टाइम थोड़ा कम है तो आधा घंटा 15 मिनट, लेकिन जितनी भी देर के लिए जाएं मोबाइल को ना लेके जाएं। हाँ, घर वालों को बता दें आप कहाँ जा रहे हैं और लगभग उतने टाइम में वापस आ जाएं, और मोबाइल ना लेके जाएं, दैट मींस 100% हम पार्क में है, नेचर में है, नेचर में रहें। और मैं आपको बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, हम सबको पता है फिर भी बता रहा हूँ, कभी आप बहुत परेशान हो तो कुछ समय के लिए, कुछ 1-2 मिनटों के लिए पार्क के बाहर खड़े हों और फिर उसके बाद कॉन्शियसली पार्क के अंदर जाएं जहां पर फूल हो, पेड़ पौधे हो, 10-15 मिनट आप स्पेंड करें जैसा मैंने कहा, नंगे पैर घास में चलें, और फिर लगभग 15 मिनट के बाद अपनी मनोस्थिति को दोबारा से आप चेक करें, आप रिलैक्स्ड पॉजिटिव हैप्पी फील कर रहे होंगे।
1: ओके, तो मतलब आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर आप घर के माहौल या अपने आपके खाने पीने की

0: तेरे अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, देखिए हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। आई नो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल है, हम इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सामने वाला क्या कहेगा, कब कहेगा, कैसे कहेगा, क्या उसकी टोन है, क्या वर्ड्स यूज करेंगे, मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे बिहेवियर पे है। तो मुझे अपने आप पे काम करना है। और यहीं पर मैं आपको एक प्रेयर दूंगा, पहले इंग्लिश में बोलूंगा और फिर उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रीफली। आप चाहे तो लिख सकते हैं, गॉड गिव मी दी सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब है पीसफुलनेस। गॉड गिव मी दी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। भगवान मुझे वो शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने के लिए जो मैं नहीं बदल सकता हूँ। सेकेंड लाइन इज गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन चेंज। भगवान मुझे शक्ति दो उन चीजों पे काम करने के लिए जिसपे मेरा कंट्रोल है, जिसपे मैं काम कर सकता हूँ। और तीसरी लाइन है एंड गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस। और मुझे सद्बुद्धि दे दोनों का अंतर जानने के लिए, यानी कि किस चीज पे मैं काम कर सकता हूँ, किस पे मुझे फोकस करना है और किस चीज को छोड़ देना है। सो अब यहाँ पर मैं वापस आपके पॉइंट पे आऊंगा मैम, कि जो किसी ने कहा क्या मेरा उस पे कंट्रोल है?
1: बिल्कुल नहीं,
0: नहीं है। लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा, नहीं दूंगा, कैसे जवाब दूंगा या चुप रहूंगा, मेरे पे कंट्रोल है?
1: सर कई बार नहीं रहता।
0: तो इसका मतलब है मुझे मेरे पे काम करना है।
1: हाँ।
0: अगर मेरा मेरे पे कंट्रोल नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा मेरी बात को मान लेगा, समझ लेगा। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ, अपनी ही बात कर रहा हूँ, कि किसी हैबिट को मुझे पता है जो मेरे में अच्छी नहीं है, मैं बदलना चाहता हूँ, पूरी 100% प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं बदल पाता हूँ, यानी वो एक आदत जो मुझे पता है गंदी है मेरे में, बदलना चाहता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ। तो जब मेरा मेरे पे कंट्रोल नहीं है तो मैं दूसरों पे अपना कंट्रोल कह के भावनाओं से या सोच में कैसे ला सकता?
1: बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर बलराज सैनी से बातें चलती रहे। और लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले एक गाना सुन लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं और देखते हैं सकारात्मक कैसे रह सकते हैं।

सकारात्मक रहना सबसे बड़ा चैलेंज होता जा रहा है आज की लाइफ में. आज की जब लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है तो ऐसे में जरूरत पड़ती है कि कोई तो हो जो हमें गाइड करे और मोटिवेशन

0: स्पीकर हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और आज हमारे शो में है डॉक्टर बलराज सैनी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ बबिता त्रिपाठी, आपकी अपनी आरजे हमेशा की तरह। आप भी तो सकारात्मक रहने का पूरा हक रखते हैं ना, तो फटाक से जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
0: चलिए फाइनली आप आ गए। आप अपना नाम बताइए और सवाल भी दोहराइए।
2: मैं बात कर रहा हूँ क्या?
0: जी आप ही बात कर रहे हैं।
2: जी मेरा जगीर है और मैं मोहाली से बोल रहा हूँ।
0: जी जगीर जी बताइए।
3: जगीर जी नमस्कार, डॉक्टर बलराज सैनी बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बताइए आपका सवाल।
2: बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मेरा क्वेश्चन मैंने बताया है, मेरा गुस्सा कंट्रोल सब जगह होता है सिवाय बीवी के।
3: ओके
2: तो जब भी हम मैं घर में जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है बहुत नेगेटिविटी है घर में।
3: ओके
2: तो हमारी बात तो शुरू होती है लेकिन वो झगड़े में पहुंच जाती है, झगड़े मीन आर्गुमेंट में। तो इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है?
0: चलिए आप रेडियो पर जवाब सुनिए और सर बताइए प्लीज।
3: हाँ जी देखिए जगीर जी का बहुत अच्छा प्रश्न है
0: और बहुत इंटरेस्टिंग है।
3: हाँ जी
0: कि सब पे कंट्रोल हो जाता है बीवी पे नहीं होता है,
3: बीवी
0: तो ये
3: पे
0: मुझे
3: नहीं
0: जानना
3: है
0: आपसे।
3: सबसे पहले क्या हम उनको इक्वल पार्टनर मानते हैं? देखिए कहना और बात है, बेटर हाफ हम बोलते हैं, इक्वल पार्टनर हैं जब हम फेरे ले रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उनको वो प्रॉपर रेस्पेक्ट देते हैं? और जब हम प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं देते हैं तो हमारी सुनने की क्षमता अपने आप कम हो जाती, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं या सोचता हूं कि मैं आपसे बेहतर हूं तो मेरी थॉट प्रोसेस ये रहती है या सोच रहती है कि मेरी बात सुनो मैं सही कह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सुने, और वो हर जगह एप्लीकेबल है, यहां पर और ज्यादा एप्लीकेबल है। अब यहां पर अधिकतर हस्बैंड्स शायद ये कह सकते हैं कि हम सुनते ही रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि एक्चुअली हम सुन नहीं रहे होते हैं, हम टाइम दे रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। सो इसको मैं फिर दोबारा से बोलूंगा कि प्रॉपर रेस्पेक्ट दें, उनको ध्यान से सुने। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसका मतलब ये है कि बाई चांस उन्होंने जो चीज बोली जिससे मैं सहमत नहीं हूं तो मैं सहमत हो जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उनको रेस्पेक्ट दें, उनकी बात को ध्यान से सुने, और ये सुनने के साथ ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, कहां से वो, जिसको हम बोलते हैं वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, किस पॉइंट से आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस है, और उनसे पूछें कि क्या आपकी बात खत्म हो गई है, आपका पॉइंट कंप्लीट है, और फिर आप अपनी बात को रखें और उनको अपनी बात सही ढंग से समझाने की कोशिश करें। सो क्रक्स ये है कि पूरा रेस्पेक्ट दें, बराबर समझें, और वो हैं, उनकी बात को ध्यान से सुने, समझें, उस पर सोचें और फिर अपना व्यू पॉइंट रखें, और फिर वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। और ये ना सोचें कि उनकी बात सही है या मेरी बात सही है, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वो हो सकता है दोनों की बातों को मिक्स करके भी आ सकता है।
0: एक सवाल इसी तरह का और आ रहा है, जब घर के माहौल की बात हो ही रही है और खास तौर पर मियां बीवी की जो लड़ाई होती है, नोकझोंक होती
3: हाँ
0: है, अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, उस पर बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज की लाइफ उस तरह से नहीं है कि हम टाइम दे पाए, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
3: हाँ जी।
0: तो इसी तरह की एक क्वेरी आई है अरविंद की, ये ऋषिकेश में रहते हैं। इन्होंने लिखा है 4 साल शादी को हो गए हैं, मेरी पत्नी और माँ के बीच संबंध ठीक नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ बातों को लेकर झगड़ा होता ही रहता है और एक दो बार दोनों के बीच हाथापाई भी हो चुकी है। इस वक्त मैं अपने गाँव में परिवार के साथ आया हूँ, ये लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल बना हुआ है, इस समस्या का हल बताइए।
3: इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और सैड, लेकिन ये काफी फैमिलीज में होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दोनों को समझना है और आप समझाएं अकेले में, क्योंकि कभी कभी मदर्स को ये लगता है कि जहां पर, एक बहुत सिंपल वे में कह रहा हूं कि मेरा बेटा 100% मेरा था, अब वो मेरा नहीं रहा, तो उनको इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है, उस सोच से बाहर निकलना है, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले पाएगा। हम 100% या 90 या 50 में नहीं जाएं, अब तो शेयर करना पड़ रहा है, मेरा 50% नहीं, माँ अपनी जगह है। और सिमिलरली वाइफ को भी ये समझना है कि वो उनका बेटा है तो वो 100% मेरे नहीं हो सकते हैं। सो अगेन, लेकिन मेरा एक स्थान है उनकी लाइफ में, वो कोई नहीं ले सकता, तो ये उनको समझाना है। है, सबसे पहले अकेले अकेले, और दूसरा स्पेसिफिकली मदर से भी बात करें अकेले और वाइफ से भी बात करें अकेले कि क्या चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ,

0: राइट आप लोग हंसेंगे क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफली अपना एग्जांपल दे रहा हूँ. मैं मैरिड नहीं हूँ लेकिन अपनी मदर के साथ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मम्मी मुझे किचन में कुछ काम करने को बोलती हैं तो उसी के साथ मुझे 5 इंस्ट्रक्शंस और दे देती हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है. तो मैं मम्मी को पोलाइटली बोलता हूँ कि आपको काम चाहिए या आपके तरीके से चाहिए.
1: ओके
0: राइट. अब देखिए ये बहुत छोटी सी चीज है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वो काम सही करूंगा या नहीं करूंगा लेकिन पहले मुझे अपने तरीके से वो काम करने दें. मैंने एक एग्जाम्पल दिया है तो शायद सास और बहू के बीच में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब वो घर में रहती हैं तो अगेन मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूंगा. सास ये सोचती हैं कि मैंने 20-30-40 साल से मुझे पता ये काम ऐसे होना चाहिए और सिमिलरली वाइफ को लगता है कि मुझे भी पता है.
1: हाँ, तो तरीका अलग है.
0: तरीका अलग है तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को समझें. और अगर सिंपली मेरे से पूछे तो मैं कहूंगा कि वाइफ को थोड़ा सा ज्यादा समझना है क्योंकि बुजुर्ग जो हो जाते हैं उन पे धीरे धीरे उनका अपने पे अपनी सोच पे कंट्रोल कम होता है और दूसरा उनको कुछ ना कुछ फिजिकल चैलेंजेस होते हैं जो वो चाह के भी बता नहीं पाते तो एक ओवरऑल उनकी लाइफ में इरिटेशन बनी रहती है जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पे आती है जिस पे हमारा थोड़ा सा ज्यादा जोर चलता है.
1: जो आपने अभी इससे पहले वाला जो सवाल लिया था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि क्योंकि वाइफ पे ही ज्यादा जोर चलता है तो गुस्सा भी उन्हीं पे उतारा जाता है.
0: उतरता है. हाँ जी.
1: तो ये पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और ये नेगेटिव वे में ले सकते हैं. कई बार ये गलत इसका रिजल्ट हो जाता है.
0: हाँ जी.
1: एक सवाल आ रहा है लेते हैं. हेलो.
2: हाँ नमस्ते
1: जी. नमस्ते. आपका सवाल बताइए. जी बताइए.
2: मेरा सवाल ये है सर.
0: हाँ जी.
2: आदमी मेरा हो जाता है 70-75 साल की एज में पहुंच जाता है. अब बच्चे जवान होते हैं तो वो बुजुर्गों की कदर नहीं करते और जो उनकी जो वाइफ है बच्चों की उनका कहना ज्यादा मानते हैं.
0: ओके.
2: तो अब जिन वृद्धों ने पूरी जवानी मतलब बच्चों के लिए होम कर दी.
0: हाँ जी.
2: और उनको मतलब बुढ़ापे में वो की मदद नहीं करते.
0: हाँ जी.
2: सहायता नहीं करते तो वृद्धों के वृद्ध आदमी के पास संपत्ति भी काफी है.
0: हाँ जी.
2: और लेकिन वो मोह माया में उसको ना तो देख सकते हैं. वो देखने का नाम भी लेते हैं तो जवान बच्चे धमकाते हैं. तो इसका क्या सरल उपाय है सर बताने के लिए.
1: अब आप प्लीज रेडियो पर सुनिए और सर बोल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट.
0: देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपकी फैमिली के लिए नहीं हर एक की फैमिली के सब बुजुर्गों के लिए जैसे ही आप रिटायरमेंट की तरफ जाएं आपके पास अपनी लाइफ के लिए पैसा होना चाहिए. बच्चे कितने भी अच्छे हों बेटा बेटी जो भी हैं सबसे पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा मैं 70-80 की बात नहीं करूंगा. मैं कहूंगा 90-100 साल तक की आप लाइफ बिना किसी पे निर्भर हुए जी पाए तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना. अब दूसरी बात ये है देखिए जिसको मैं इस तरीके से कहता हूं कि मैंने किसी को बात समझाई एक बार दो बार तीन बार और वो नहीं समझ रहे हैं तो मुझे समझना है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं वो समझना नहीं चाहते हैं तो मुझे फिर पीछे हटना है. क्योंकि आपकी अगर एज 75 है तो आपका बेटा बेटी बहू अगर ज्यादा नहीं तो 40-50 के बीच में होंगे तो उन्होंने भी लाइफ देखी है. सही गलत नहीं कहूंगा मैं. हो सकता है कि उनके विचार आपसे नहीं मिलते हैं तो आप प्यार से एक बार दो बार समझा दें लेकिन नेगेटिविटी नहीं लेके आए. क्योंकि अगर किसी ने समझना है आपके लिए कुछ करना है तो वो एक या दो बार में कर देंगे नहीं तो नहीं करेंगे. और फिर भी आपको चैलेंज आता है तो बिना नेगेटिव हुए आप उनकी बात को सुने. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मैं बुजुर्ग हूं मैंने जिंदगी देखी है आपने उतनी जिंदगी नहीं देखी है तो मैं सामने वाले की बात को ध्यान से सुनता नहीं हूं समझता नहीं हूं.
1: और कई बार उनकी सिचुएशंस उनकी लाइफ की अलग रही होंगी और अब अलग है तो वो अलग तरीके से जो बच्चे होते हैं वो डील कर रहे होते हैं.
0: हाँ
1: लेकिन क्योंकि बुजुर्ग हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी देखी है तो इनको समझ में नहीं आ रही होती. या इसी तरह से बच्चों के साथ भी हो सकता है कि बच्चे नहीं समझ पाते कि उसको बेटर तरीके से किस तरह से और डील किया जाए क्योंकि ये इनका एक्सपीरियंस है और वो गलती कर बैठते हैं उसके बाद वो उस चीज को समझ पाते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो ऐसी भी कई बार संभावनाएं होती.
0: बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट बबीता जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज किया है कि यहीं से मैं आगे लूंगा कि एक दूसरे की सिचुएशन को समझें. हम फोकस इस पे ना करें कि वो मेरी बात को नहीं सुनते हैं. सोचें कि भाई ठीक है मैं पहले इनकी सिचुएशन को समझूं. हो सकता है कि उनके लिए अपनी नौकरी को ही बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और आपको लगता है मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो टाइम देना चाहते हैं, और मान लीजिए फिर 5 या 6 दिन वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा वाइफ को फैमिली को टाइम देते हैं, तो ना चाहते

0: वो भी आपके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
1: हाँ। सर ये रिश्तों पर ना बहुत लंबा हमें लगता है डिस्कशन करना पड़ेगा और तभी जाके हम किसी न किसी एक पॉजिटिव निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपकी जो बातें हैं ना वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही हैं और मैं चाह रही हूँ कि वो चलती रहे। लेकिन इससे रिलेटेड एक बड़ा फनी सा बड़े मजेदार सा गाना मुझे याद आ गया और मैं चाह रही हूँ वो चला देते हैं, उसके बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं।

0: डरना क्या जरूरी है? सर आप बताइए कि ये जो जमाना बदल गया, इसमें मतलब आप कहाँ से पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं? ये अच्छी बात है या ऐसा ही होना चाहिए?
1: देखिए, डरना, ऑफ कोर्स डरना तो नहीं है, लेकिन मैं इसको बैकग्राउंड में जाके सोच रहा हूँ कि जब मैं पहले अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था या समझती थी, तो जब मुझे उस लेवल से नीचे आ रहा है तो वहां पर वो डर पार्ट आ रहा है। तो लेकिन डर ना सोचे, ये सोचे कि हर आदमी एक ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो रोड पे है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो मेरा बच्चा है, चाहे वो मेरे ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले हमें उनको एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट देना है, चाहे हम उनसे अग्री करें या ना करें। और यहीं पर मैं एक पॉइंट छोटा सा बोलूंगा कि डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम उनको रिस्पेक्ट ना दें। रिस्पेक्ट देते हुए भी हम असहमत हो सकते हैं। तो ये हमें समझना है। असहमत होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके ऊपर किसी पे शाउट करूं, आपकी बात को सुनूं, समझूं, सहमत नहीं हूं, पहले सुनूं फिर अपनी बात को रखूं, लेकिन बीच में डिसरिस्पेक्ट कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए।
0: सर, इसी तरह से जो रिश्तों में जो तनाव की हम बात कर रहे थे और अभी जमाना बदलने की भी बात कर रहे थे, जमाना इस तरह से भी बदल गया है कि पहले हम अपने पेरेंट्स से बड़े डरे डरे रहते थे कि उनको कुछ बुरा नहीं लग जाना चाहिए और उनकी तरह से हम सब कुछ करें तो हम बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे, और अब हम एज अ पेरेंट्स डरे डरे रहते हैं कि बच्चों के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए ताकि बच्चों को बुरा ना लगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ ऐसा फील कर ले स्कूल में, कॉलेज में या फिर घर में जो दिल पर ले बैठे। तो हम क्या डरे डरे ही रहेंगे क्या? हमारी जो पीढ़ी है वो इस तरह से रहेगी या क्या प्रॉब्लम आ रही है?
1: देखिए मैम, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल उठाया है और मुझे याद आ गया, जो ब्रीफली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें एक टर्म थी बुलडोजर पेरेंट।
0: अच्छा,
1: बुलडोजर पेरेंट का मतलब है अपने बच्चों की लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को हटाते रहते हैं। हाँ। मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। मैं कहूंगा कि ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर मैंने बच्चे को बड़ा होने तक, लेट्स से मोटा मोटा 18 साल तक मैंने उसको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होने दी, तो उनमें वो रिजिलियंस नहीं आएगी, क्योंकि हर टाइम पर तो पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो वो उनमें वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ कि जब प्रॉब्लम आएगी तो कैसे उसको हैंडल करना है, वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि पेरेंट्स ने डिसीजन लिया है। तो मैं इनडायरेक्टली आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, एक बैलेंस क्रिएट करना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पर चूंकि माहौल बदल गया है, बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और वो ले सकते हैं, तो बच्चों से एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना है, लेकिन जहां पर हमें उनको ये समझाना है, बताना है, हमें वो बाउंड्री भी रखनी है, वो बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सो दो चीजें बोल रहा हूं। नंबर वन,

0: लेट्स बी फ्रेंड्स लेकिन विद अ बाउंड्री, कि जहां हमें लगे कि अब ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है या मुझे थोड़ा सा पेरेंट मोड में आना है तो आना पड़ेगा, लेकिन अगर पीछे जाएं तो जो अगर हम 80% या 75% या 100% पेरेंट मोड में होते थे, सो एक मोटा मोटा बोलूंगा कि अब हमें 25-30% पेरेंट मोड में होना है और 70-75% हमें फ्रेंड मोड में होना है, ताकि हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पाएं और वो ओपनली हमें बताएं. क्योंकि अगर हम अब भी 100% पेरेंट मोड में रहेंगे तो नंबर वन वो हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे और सही गलत इन्फॉर्मेशन वो इंटरनेट से या फ्रेंड से लेंगे जो चांसेस है गलत हो सकती है और जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है.
1: एक सवाल हमारे जो कॉलर हैं वो जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं. हेलो.
2: हेलो सर, नमस्ते.
0: नमस्कार सर.
2: जी मैं मोहम्मद जावेद बोल रहा हूँ मेरठ से.
0: हाँ जी मोहम्मद जावेद जी बताइए.
2: सर मेरा सवाल ये है कि घर के कामों को लेकर और बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको लेकर लड़ाई होती है फैमिली के अंदर.
0: हाँ जी.
2: तो उन बातों को किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से समझाएं, क्योंकि लेडीज जो है कामों को बांट देती है और जेंट्स के द्वारा काम नहीं बांट सकता किसी को भी. किस तरीके से समझाया जाए.
0: देखिए सर, सर जैसे ही आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि मैंने आपको समझाना है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप गलती कर रहे हो, मैं तो सही हूँ.
1: जी बिल्कुल.
0: तो हम दोनों को बैठ के समझना है. फिर वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले सामने वाले की लाइफ में क्या चैलेंज है, चाहे वो घर का काम है, सुने समझे, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, उनकी सिचुएशन को समझें और मिल बैठ के उसका एक सॉल्यूशन ढूंढें. जब जब मुझे ये लगता रहेगा कि मैं ठीक हूं जाने या अनजाने में और सामने वाला गलत है, हम कहते नहीं है लेकिन थॉट प्रोसेस ये है, तो सिचुएशन ऐसी रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने मन के अंदर से अपने थॉट प्रोसेस से वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हूं दूसरे के लिए और वो नेगेटिव वाइब्स वो नकारात्मकता दूसरे तक जाती है.
1: तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपने एक प्रेयर की बात की थी और कुछ बातें आपने बहुत अच्छी बोली थी जो मैं चाहती हूँ वो मिस ना हो और उनको आप पहले बोल दीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तभी हम कंटिन्यू करेंगे और सवालों के साथ, क्योंकि सवाल लगातार आ रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अब पॉजिटिविटी हम क्रिएट कैसे करें अपने अंदर. हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक की सिचुएशन में चैलेंज है. तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि धन्यवादी रहें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, फील ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड. जो भी मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद रहें, धन्यवाद देते रहें. और यहां पर मैं कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत अच्छी लगती हैं. जब भी मैं ग्रैटिट्यूड की बात करता हूं तो ये लाइनें मेरे दिमाग में आती हैं. और इनफैक्ट यहीं पर मुझे ध्यान आ रहा है उससे पहले कि यहीं पर इसी मंच पर ऑल इंडिया रेडियो पे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, सो वो भी आप देख सकते हैं. सो कुछ लाइनें इस तरीके से हैं, समय की अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखूं, समय की अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखूं, जब जिंदगी ने दिया बेशुमार, जब जिंदगी ने दिया बेशुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं.
1: वाह क्या बात की.
0: जब जिंदगी ने दिया बेशुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखूं, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखूं, जब जिंदगी ने दिया बेशुमार तो जो ना मिला उसका हिसाब क्या रखूं.
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो सर प्रेयर आपने बोली थी. जी
0: हाँ जी हाँ जी. उस पॉइंट पे भी आता हूँ मैम कि धन्यवाद रहें जो भी है. और इसी में एक चीज और करूंगा कि थोड़ा सा आप दूसरे तरीके से भी सोचे धन्यवाद होते हुए कि आज जो मेरे पास है वो नहीं होता तो क्या होता, तो आप और ग्रेटफुल धन्यवादी फील करेंगे. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम अपने आप से बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं कहना है. जब कोई नेगेटिव चीज आती है तो उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस कर दें. मान लीजिए एक नया चैलेंज आया, इश्यू आया, प्रोजेक्ट आया, यार मेरे से क्या हो पाएगा, तो इमीडिएटली हाँ मैं कर सकता हूँ. पुराने चैलेंजेस इश्यूज को सोचें, यार वो जो प्रॉब्लम आई थी तो वो भी तो किया था मैंने, ये भी कर सकता हूँ. या अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज आपको बड़ी लग रही है लेकिन अगेन पिछली चीजों को देखें उस पॉइंट पे वो भी आपको बहुत बड़ा लगता था. सो अपने आप को ये कहते रहें कि मेरे में कैपेबिलिटी है और मैं कर सकता हूं, तो वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक मुझे रखनी है. और यहीं पर मैं

0: एक चीज और ऐड करूंगा, पहले मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा फिर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. वी आर अ सम ऑफ स्टोरीज वी टेल आवरसेल्फ्स, यानी कि मैं जो भी स्टोरी अपने बारे में अपने आप को बताता हूँ वही मैं बनता हूँ. तो अगर मैं बताता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये स्टोरी मैं अपने आप को बता रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव रहूंगा, कर पाऊंगा. और यही मैं कहूंगा, यार मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तो ये एक स्टोरी मैं बता रहा हूँ. तो मैं इनडायरेक्टली, पता नहीं ये क्यों होता है, तो मैं वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वो नेगेटिव स्टोरी मैंने क्रिएट की है अपने लिए, और उसी तरीके से नेगेटिविटी को मैं और अट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो ये हमें ध्यान रखना है. और दो पॉइंट्स मैं और बताऊंगा कि हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं. एक माइंडफुलनेस, जहां पर भी हैं आप उस जगह पे फोकस रहें. आजकल बहुत जगह होता है मल्टीटास्किंग करनी है, मैं कहूंगा जहां पर भी रहें वहीं पर फोकस रहें, 100% अटेंशन दें. इससे हम बहुत रिलैक्स होते हैं. और मेडिटेशन करें, आप पार्क में नहीं जा सकते, 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ बैठें, तो धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन मिलती है, क्लैरिटी आती है, एक्सेप्टेंस आती है, पॉजिटिविटी आती है. और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव रहने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों से, पॉजिटिव किताबों से, पॉजिटिव थॉट्स से सराउंड करें. जिम रॉन एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो कहते हैं यू आर अ सम ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद. तो आप जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे वो हैं वैसे आप बन जाते हैं. तो अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव नहीं भी हैं, तो पॉजिटिव लोगों की संगत रखें, उनसे बातचीत करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी थॉट्स रखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप में पॉजिटिविटी और आ जाएगी.
1: और डॉक्टर बलराज सैनी, आज आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है, और मन तो ऐसे ही कर रहा है कि आपकी बातें ऐसी ही चलती रहे और हम सुनते रहें. अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे अपनाएं, इस पर हम और डिटेल में बात करना चाहते थे, लेकिन समय है जो कह रहा है कि अभी बस करते हैं, फिर कभी कंटिन्यू करेंगे. और सर, अगर 2 पॉइंट्स आप चाह रहे हैं कि कुछ और ऐड करें तो फटाफट कर दीजिए.
0: हाँ जी, थैंक यू मैम. और एक तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, और शायद आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, आप इनका नाम नोट कर सकते हैं, होकाइतो जी मोमो, HOKAITO, होकाइतो जी मोमो, ZHIMOMI. अब मैं क्यों इनकी बात बता रहा हूं, ये 2008 में पहले क्रिकेटर बने नागालैंड से IPL में खेलने के लिए. इंटरेस्टिंग. लेकिन कभी ये फाइनल 11 में यानी मैच नहीं खेल पाए. सो अब इनके पास देखिए 2 ऑप्शंस थी, या तो ये कह सकते थे कि मेरे को तो खेलने का मौका नहीं मिला, मैं परेशान रहूंगा, या ये सोच सकते थे कि मैं फाइनल 11 तक पहुंचा, जो बचपन से जिन लोगों को मैंने क्रिकेट खेलते देखा, जो मेरे आइडोल थे सौरभ गांगुली, रिकी पोंटिंग, मैंने उनके साथ रूम शेयर किया, उनके साथ खेला, उनके साथ उनसे सीखा, यानी कि ये चॉइस हमारी है कि हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली देखेंगे या नेगेटिवली देखेंगे. तो और इन 3 लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगा.
1: बिल्कुल.
0: हमेशा ये ध्यान रखें और कहते रहें अपने आप को, बल्कि 4 लाइनें हैं, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, आई चूज टू सी द गुड इन एवरी सिचुएशन, एंड द लास्ट इज एवरीथिंग इन एवरी वे इज गेटिंग बेटर एंड बेटर इन माई लाइफ. आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद.
1: बहुत धन्यवाद आपका कि इतनी बढ़िया बातें आपने कही, और इतनी इन खूबसूरत लाइनों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. आप स्टूडियो में आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई, जिससे हमारे जीवन में तो सकारात्मकता ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है. तो फिलहाल इसी के साथ मुझे बबीता त्रिपाठी को भी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी. टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर.
2: रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया. इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
7: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
8: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
7: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
8: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
7: और विनर्स को क्या मिलेगा?
8: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com।
3: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
10: पता का चाय, गजब का स्वाद।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: आकाशवाणी।
1: गर्मियां इस समय बहुत ज्यादा और ऐसे में हमारे होम मेकर जो हैं वो सबसे ज्यादा चिंता उनको इस बात की सताती है कि क्या हमारा खाना ठीक है, क्या हम इसे खा सकते हैं, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बस कैसा बनाना चाहिए, हाइजीनिक है या नहीं है। बस इसी चिंता में हमारी जो होम मेकर्स होती हैं ना वो घुली रहती हैं और बस अपने परिवार की सेहत की चिंता करती रहती हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का आशियाना कार्यक्रम वुमेन स्पेशल मैं लेकर आई हूँ बबीता रावत। जुड़े रहिए मेरे साथ आशियाना प्रोग्राम में। हमारा और आपका तो दिल का रिश्ता है और इस दिल के रिश्ते को यूं ही बरकरार रखते हुए आप और हम साथ साथ बहुत सारी बातें करेंगे।

भाई दिल का रिश्ता बहुत ही प्यारा है, और ये प्यारा सा बंधन तब ज्यादा मजबूत हो जाता है जब मुंह का स्वाद उसमें चढ़ जाता है। जी हाँ, कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट के रास्ते से जाता है, और पापी पेट का सवाल है। और जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन खाना अगर साफ सफाई वाला ना हो तो बीमारियां हो सकती हैं। और खाने को गलत तरीके से पकाया जाए, सिर्फ पेट भरने के लिए खाया जाए, ऐसा तो नहीं है ना। फायदा तो तभी पहुंचेगा जब वो बिल्कुल सुरक्षित हो और साथ ही साथ हाइजीनिक हो। और जब हाइजीन की बात की जाती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। हम अक्सर घर के खाने की बात करते हैं, और घर के खाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि जो घर में पकने वाला खाना है वो बिल्कुल हाइजीनिक है और हमें ये बीमार नहीं कर सकता। पर कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमसे वो चूक होने की वजह से इसका असर कहीं ना कहीं हमारी जो सेहत है उस पर दिखाई देता है। वो चूक कौन सी होती है मैं बताती हूँ आपको। सुनते ही रहिए मेरे साथ आशियाना वुमेन स्पेशल में। मैं हूँ बबीता रावत, आज आपके साथ।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: पानी पानी पानी, पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है। तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आशियाना विमेन स्पेशल। और हमारे घर की जो विमेन है ना, वो स्पेशल इसलिए होती हैं क्योंकि वो हर घर में सेहत की स्वामी होती हैं, और सेहत का सीधे रास्ता हमारे पेट से जाता है। जब पेट की बात आती है तो हमारे घर की जो गृहणियाँ होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि हमारे घर में एक पौष्टिक आहार से भरपूर थाली हमारे परिवार को मिले, और कोशिश यही रहती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी सी कोशिशें चूक हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो है सेहत में थोड़ा सा असुधार सा दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपने फूड को थोड़ा सा सेफ रखें तो क्यों ना आपकी सेहत पे उसका फर्क साफ दिखाई देगा। जी हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं लेकिन हमें समझ आती है और कभी नहीं आती हैं, जैसे कि फ्रिज में रखा हुआ खाना। हाँ, अक्सर हम लोग फ्रिज में रखे हुए खाने को रख मतलब सेफ रख समझते हैं, और कोशिश यही रहती है कि जो हमारा खाना बच जाता है वो हम फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आपको पता है फ्रिज में रखा हुआ खाना भी कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। जी हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौसम के हिसाब से फ्रिज में रखे हुए भी खराब हो जाती हैं। जैसे नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो जल्दी से जल्दी इनका उपयोग कर लेना चाहिए। कई लोग करते हैं ऐसा कि फ्रिज में नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स रख देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक, बहुत लंबे दिनों तक उसको यूज़ करते हैं, लेकिन बार बार फ्रिज खुलने और बंद होने की वजह से फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क आता है, और ऐसे में जो टेम्परेचर चेंज होता है उससे नॉनवेज और डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। हाँ, कई बार हम कोशिश यही करते हैं, जैसे खाने को सूंघ करके या फिर उसकी स्मेल से हमें कोशिश करते हैं पता लगाने की कि ये ख़राब हुआ है या नहीं। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? जी नहीं। किसी भी वस्तु जो खाने वाली है, पकी हुई चीज़ है, तो उसको अगर हम सूंघ के पता लगाएंगे तो शायद स्मेल ना आए, या खा के चख के पता करेंगे तो शायद वो ना हो, उसका टेस्ट ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत को फर्क कर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल जल्द से जल्द कर लें, और ख़ास तौर से पकी हुई चीज़ों को। आजकल क्योंकि गर्मियां हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक या दो दिन में ही आपको कंज्यूम कर लेनी चाहिए, और वैसे भी इतना मत बनाइए गर्मियों में खाना कि वो दो तीन दिन तक रह जाए। इतना कि हाँ भाई, अगर आज सुबह आपने कुछ खाना बनाया तो शाम तक वो चल जाए और शाम तक आप उसे यूज़ कर सके। तो ये छोटी सी बातें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी सेहत को खुशहाल बना सकते हैं।

0: कभी कभी जो जर्म्स होते हैं ना वो ऐसे ढलते हैं, घुलते हैं और मिलते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। खास तौर से कुछ ऐसी ही चीजें हैं, जैसे अगर एक फ्रिज में रखने वाले सामान की बात की जाए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, गुथे हुए आटे को जो बच जाता है वो रख देते हैं फ्रिज में और बहुत लंबे समय तक रखा रहने देते हैं और 2-3 दिन तक यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, गुथे हुए आटे को फ्रिज में रखकर 24 घंटे के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, इससे टेस्ट भी बरकरार रहता है और क्वालिटी भी इससे इफेक्ट नहीं करती है। तो बिल्कुल ये काम आप जरूर करिए और साथ ही साथ फल और सब्जी को काटने वाले जो चॉपर चॉपिंग बोर्ड होते हैं ना, हर किसी के घर में होते हैं, और जब स्टील वाले चॉपिंग बोर्ड की बात आती है तो शायद मैंने बहुत कम लोगों के घरों में देखा है, ज्यादातर लोगों के घरों में लकड़ी के बने हुए चॉपिंग बोर्ड होते हैं। तो भाई लकड़ी के बने हुए चॉपिंग बोर्ड में शीशम की लकड़ी से बना हुआ जो चॉपिंग बोर्ड होता है वो काफी बेहतरीन होता है, उसे इस्तेमाल करना ठीक होता है। लेकिन आप जब भी चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें उसे गुनगुने पानी या लिक्विड सोप से अच्छी तरह से धो लें। आजकल तो पॉली चॉपिंग बोर्ड भी आते हैं और जिनके घरों में नॉनवेज बनता है और वो फिलहाल नॉनवेज और वेज दोनों चीजों के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्टील वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है, आप यूज करें इसे और देखिए फिर आपके घर की जो हाइजीन है वो किस तरह से मेंटेन रहती है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही,

0: कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, हम फ्रिज में सामान रखने के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, जब भी कभी आप फ्रिज में सामान रखते हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली ये टेक्निक जरूर अपनाएं, यानी कि जो आप पहले रखें उसे पहले इस्तेमाल करें और जो आप बाद में रखें उसे बाद में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी और बर्बादी की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। अभी ला लिए गाना और जुड़े रहिए हमारे साथ आशियाना कार्यक्रम में।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे
2: कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं
1: जी। सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
1: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार

0: सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
0: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी न मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब थे।

0: गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहां जाती बेचारी। अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है।
1: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
2: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
1: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
2: लो।
1: देखो जी मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई,
1: हाँ?
0: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
0: अच्छा,
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ और मैं भी वहीं पर उतरूंगा। घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: हाँ?

0: बेटी
1: गाड़ी ले।
2: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा।

0: बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हर गोपिन भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहां अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
5: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है, अब बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
4: अच्छा अच्छा माँ जी।
5: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
4: माँ जी,

0: दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पैर लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
2: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
2: अच्छा
0: अच्छा, राम राम
2: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।

0: FM 드래곤밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: इतु आकाशवाणी कोहिमा एफएम ड्रैगोपैन 103 मेगाहर्ट्ज़ होमो 4 बजे 30 मिनट लगा ट्रैफिक अपडेट एन एस ए फॉर कोहिमा टाउन मोंकला बरा पी एच क्यू जंक्शन तक ट्रैफिक इतिया नॉर्थ बाउंड दैट इज टुवर्ड्स नागालैंड सिविल सेक्रेटरी दे लाइट असे और साउथ बाउंड दे लाइट असे दैट इज टुवर्ड्स पीआर हिल पी एच क्यू जंक्शन टू मेजर जंक्शन तक ट्रैफिक इतिया नॉर्थ बाउंड दे लाइट असे और साउथ बाउंड दे हेवी असे

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वर्ल्ड लिसनर्स कैन प्रोग्राम ते आको जिसका गीत होने वाला और एक गीत करने देखी है ना पता है से लिवी सू फ्रॉम लजामी और एक गीत होने वो अरिजीत सिंह लगा वास्ते फिल्म से सनम रे

सिंहहरु अन्तरा मित्रालाको वास्ते फिल्म छ दिल वाले आरो त्यो गीत गरिने लेखिकिन पठाएछ रोकोभिले मेथा फोर्थ माइल टिपु पार चमुकि दिमा परा आउ टाइटु गाना डेडिकेट कुरि दिएछ राजेश कुमार मन्दिरा बाइकोन मुन्डा हितेन्द्र दास सुनील पंचो अचिङ यमख्युङ रमेश पत्रो अखुजो चोपी ब्रदर्स अभिषेक ताली शिकारी रोंगफार चुबाकी जमीर जोगेन्द्र रोंगपी अमल बसुमतरी सुनीता बसुमतरी अंजलि बसुमतरी देवाशीष हजरिका विमल बसुमतरी बीरेन हंसे एंड ऑल द आरजे स्क्वीन लिखी है।

0: वेल लिसनर्स कम टाइम हो जाए तो कहने 7:10 और 7:20 हल के अपनी गान शुनी हम नागामीज और इंगराजी रिजनल खबर सो थैंक यू सो माच फर ट्यूनिंग एंड अपनी गान सब भी लिखी कि पठाई दिखाने अपनी गान सबके भी थैंक यू कहना जाना दी आज एंड मैं आको अपनी गान के लग रही हम 9:30 और 7:30 आज रिक्वेस्ट प्रोग्राम देट इज अल्सो वेस्टर्ण म्यूजिक आज यू टाइम भी अपनी गान পার্টিসিপেট করবো পারে আপনি লিখি কিনা পঠাব পারে এই টাইম দিবে সো 9:30 আছে হিন্দি ফিল্ম সংস দ্যাট ইজ ডুয়েটস এন্ড খরচ তো এই টাইমতে লগ করে হব
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें। PM सूर्य घर

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
1: The amount of time we have spent
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने

0: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय,